0: फर्स्ट फ्लाइट थी जो इधर लैंड हुई थी, उसके बाद दोबारा वैसे बैन लग गया था.
1: सही सही, ओमिक्रॉन आ गया था मेरे ख्याल में शायद उन दिनों की बात.
0: हाँ हाँ वही, मतलब एक ही फ्लाइट आई थी और उसमें मैं आ गया. मुझे प्रोफेसर भी कहते तुम बड़े लकी हो,
1: सही.
0: उससे पहले भी बंद थी और उसके बाद भी 1-2 महीने बंद हो गई थी. तो बहरहाल मैं आया, और पहले तो 14 दिन का इधर क्वारंटाइन था, वो तो मैं चलो अकेला रह लिया. फिर जब नागासाकी गया, और मतलब कि बिल्कुल अकेला, उधर पाकिस्तानी भी नहीं था यूनिवर्सिटी में मेरे, ना पहले पहले बहुत मुश्किल हुआ. मतलब एक तनहा ज़िंदगी, और पाकिस्तान थोड़ी सी सोशल लाइफ है, यहाँ
1: हर
0: तो
1: बंदा अपने काम में मगन.
0: मगन है और बहुत प्राइवेट लाइफ. मतलब कोई उस टाइम तो एक फासला बना लेते, चलते भी
1: हाँ हाँ वाकई
0: फासला
1: वो
0: बना
1: भी
0: लेते
1: ज्यादा
0: थे
1: हो
0: कि
1: गया था.
0: हाँ,
1: सही.
0: वो वक्त तो ऐसे मुझे लगा मैं किधर आ गया हूँ. तो काफ़ी शुरू में डिप्रेशन भी होने लगा, मतलब 1-2 माह मैं बिल्कुल परेशान था कि मैं किधर आ गया हूँ, कोई खास कम्युनिकेशन नहीं है. एक तो लैंग्वेज बहुत
1: तो लैंग्वेज
0: बड़ा
1: सीख पाए या नहीं इसके बारे में बताइए, जापानी जबान.
0: मैंने कोशिश तो बहुत की, यूनिवर्सिटी में भी क्लासें कुछ लीं, एक N5 लेवल में कह सकता हूँ कि मुझे आ गया, मतलब कि बेसिक, बहुत बेसिक जो है वो मैं समझ सकता हूँ.
1: तो अभी बहुत सारे जो हमारे लिसनर्स हैं पाकिस्तान में, खासकर स्टूडेंट जो जापान आना चाहते हैं, खास तौर पे जो आपका जो स्कॉलरशिप है मैक्स का स्कॉलरशिप, इसके थ्रू आना चाहते हैं, जो ताकि वो चाहते हैं कि फ्री में उनको एजुकेशन भी मिल जाए, एक्सपोजर भी हो जाए, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: मैक्स स्कॉलरशिप जो है वो उसके दो वेज हैं, एक एम्बेसी ट्रैक है, एक यूनिवर्सिटी ट्रैक. एम्बेसी ट्रैक जो है ये यही अप्रैल मई में अभी जापान एम्बेसी जो पाकिस्तान में है उनकी वेबसाइट पे वो अनाउंस कर देते हैं, अभी ओपन हो गए. तो सबसे पहले तो उसमें 80% मार्क्स आपके होने चाहिए बैचलर में या मास्टर्स में,
1: सही.
0: अगर मास्टर के लिए आ रहे हैं बैचलर में, और अगर PhD के लिए आ रहे हैं तो मास्टर्स में आपके 80+ मार्क्स होने चाहिए. और अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं देन तो जापान आपको पक्का ले लेगा,
1: सही.
0: मतलब अच्छी प्रोफाइल को पक्का ले लेते हैं. तो उसमें वो कुछ डॉक्यूमेंट हैं वो उसी वेबसाइट पे होंगे, उनको फिल आउट करके आपने इस्लामाबाद भेजने होते हैं एम्बेसी को. फिर उसमें वो रिक्रूट करते हैं और कुछ कुछ शॉर्टलिस्ट करते हैं, और फिर कुछ का इंटरव्यू या टेस्ट लेते हैं, और उसके बाद वो सिलेक्ट हो जाता है और फिर आप यूनिवर्सिटी आ जाते हैं. ये है एम्बेसी ट्रैक जो है स्कॉलरशिप मैक्स. और दूसरा
1: ये एक तरीका है.
0: ये एक
1: अच्छा, अब
0: तरीका
1: एक
0: है,
1: दूसरा तरीका आप बता
0: अब
1: रहे.
0: दूसरा तरीका है,
1: जी
0: वो भी मैक्स ही है लेकिन वो यूनिवर्सिटी ट्रैक है.
1: अच्छा.
0: उसमें आप अपने रिलेटेड जो यूनिवर्सिटी हैं उनको ओपन करते हैं, और उनकी फैकल्टी में जाके, उनकी फैकल्टी में अपने रिलेटेड जो रिसर्च प्रोफेसर्स हैं उनको कॉन्टेक्ट करते हैं, और उनसे कहते हैं कि मैं इस तरह से अपनी प्रोफाइल उन्हें शो करवाते हैं, अपनी CV उन्हें भेजते हैं कि मैं आपकी लैब में काम करना चाहता हूँ. अगर वो ओके कर देते हैं फिर वो यूनिवर्सिटी जो है आपसे कांटेक्ट करती है और डॉक्यूमेंटेशन लेती है, और फिर आपका एक इंटरव्यू भी होता है, और उसके
1: अच्छा,
0: बाद आप सिलेक्ट हो जाते हैं और जापान
1: सही
0: आते हैं.
1: सही सही सही. अच्छा, तो अब यहाँ NHK में आप ट्रांसलेटर हैं, तो इससे पहले भी ज़ाहिर है आप ख़बरें तो पढ़ते होंगे, तो यहाँ बेखबरों का आपका तर्जुमा की आपकी ज़िम्मेदारी है.
0: जी.
1: क्या फ़र्क आपको महसूस हुआ जो दीगर मीडिया हैं और पाकिस्तानी, और ये जो NHK हमारा है इसकी ख़बरों में क्या फ़र्क आपको महसूस हुआ?
0: पाकिस्तानी मीडिया में थोड़ा जज्बाती न्यूज़ ज़्यादा देते हैं, मतलब हेडलाइंस पे ज़्यादा वो होता है उनका फुल जोर कि ये किसी तरह लोगों की अट्रैक्शन लें. लेकिन NHK में ये ज़्यादा न्यूज़ पे और उसका कंटेंट पूरा देते हैं कि ये वाकया कब और कहाँ कैसे हुआ, उसका नीचे फुल डिटेल भी होती है ताकि हमें दोबारा रिमाइंड ना करना पड़े. तो वो एक ही न्यूज़ में आप इजीली समझ सकते हैं कि इस न्यूज़ का बैकग्राउंड क्या है, पस मंज़र क्या है, और ये अभी न्यूज़ क्यों आ रही है.
1: अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बर साहब दीवान खाना को टाइम देने
0: जी
1: के लिए. हमारे नए ख्वाहिशात आपके साथ हैं. थैंक यू सो मच.
0: बहुत शुक्रिया आपका.
2: जी सामिन, सैयद शब्बर हुसैन शाह साहब की बातें हमने सुनी. आज गुलुकार गन होशिनो का गीत सोजो उनके नाम करेंगे. और आपको इस गाने की तफसील बताते चलें कि ये गाना निंटेंडो गेम से मंसूब है जो सुपर मारियो ब्रदर्स की 35वीं सालगिरह के मौके पर गाया गया.
3: गेन होशिनो 1981 में पैदा हुए सैतामा प्रिफेक्चर से ताल्लुक़ रखने वाले गेन होशिनो अदाकार, मौसीकार और मुसन्निफ के तौर पर सरगर्म हैं.
2: उन्होंने NHK की मॉर्निंग ड्रामा सीरीज हम बुन आओई के लिए थीम सॉन्ग भी कंपोज किया.
1: हमारे जापानी अमले की रुकन मोहतरमा उराता ने ये गाना क्यों मुंतखब किया? इसके जवाब में उन्होंने बताया कि लफ्ज़ सोजो का मतलब है तख्लीक. वो कहती हैं कि मैंने ये गाना इसलिए मुंतखब किया क्योंकि मुझे यकीन है कि नए ट्रांसलेटर सैयद शब्बर हुसैन शाह مستقبل میں شاندار صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے.
3: اس دلچسپ اور منفرد جاپانی گیت کے ذریعے وہ نئے مترجم کو گرم جوشی سے خوش آمدید جاپان کا پیغام دینا چاہتی ہیں. گیت کے بولوں میں ہیں، آئیے کچھ تخلیق کریں، آئیے کچھ منفرد تخلیق کریں.
2: تو چلیے آئیے سنتے ہیں.

0: ये NHK World Japan की उर्दू सर्विस है। हमारी ये नशरियात पाकिस्तान में रात 9 बजे और भारत में रात 9:30 पर शॉर्ट वेव्स 9440 किलोहर्ट्ज पर सुनी जा सकती हैं।
1: जी सामिन, और अब जापानी बोलचाल के प्रोग्राम के हवाले से एक बहुत ही खुसूसी ऐलान।
0: जी दोस्तों, हम आइए जापानी बोलें का क्विज सिलसिला आज से शुरू कर रहे हैं जापानी जबानदानी, जिसमें जापानी जबान का एक नामुकम्मल जुमला पेश किया जाएगा।
2: इस नामुकम्मल जुमले में खाली छोड़ी गई जगह को आपने पुर करना है और मजकूरा मिसिंग लफ्ज लिखकर हमें रवाना करना है।
1: नामुकम्मल जुमले की तस्वीर हमारे होम पेज पर दीवान खाना के पेज पर मेजबानों की तस्वीर वाले हिस्से में पोस्ट की जाएगी।
2: दीवान खाना के पेज तक रसाई का तरीका बताते चलें कि आपने खोलना है हमारा पेज nhk.jp/urdu, फिर शोज ऑन डिमांड के उनवान पर जाके दीवान खाना के सफ़े तक पहुंचकर 24 मई के प्रोग्राम की वेबसाइट खोलिए।
0: इस पेज पर क्विज के जुमले वाली तस्वीर नजर आएगी, इसको देखकर अपना जवाब सोचना है और हमें रवाना कर देना है, और दुरुस्त जवाब वाले सामीन यानी क्विज में शरीक होने वाले सामे का नाम हम दीवान खाना में नश्र करेंगे।
1: तो 24 मई के शो के सफ़े पर 10 सवाल हैं। हारूसा हाउसु वा डैश डैश डैश।
0: इस इबारत में मौजूद खाली जगह पुर करनी है, क्योंकि नामुकम्मल इबारत यानी के सवाल में सिर्फ हारूसान हाउसुआ डैश डैश डैश मौजूद है, लिहाजा बाकी अल्फाज आपने अपने जवाब के तौर पर लिखने हैं।
2: इसके लिए हम आपको इशारा देंगे कि यह हमारे इबारत हमारे होम पेज पर जापानी बोलचाल के प्रोग्राम के कौन से सबक नंबर में है, ताकि आप वहां जाएं, दुरुस्त जवाब तलाश करें। और अभी हमने जो जुमला बताया हारूसा हाउस वा देश देश देश देश, इसका जवाब हमारे होम पेज nhk.jp/urdu पर जापानी बोलचाल के सबक नंबर 1 में मौजूद है।
1: आइए जापानी बोलें के असबाक के मुतल्लिक का सफ़े तक रसाई हासिल करके इस सबक में जवाब तलाश करें।
2: जी सामिन, आप अपना जवाब जापानी या उर्दू रस्म الخط में या फिर रोमन हरूफ में लिखकर भेज सकते हैं। सही जवाब तो हमारे प्रोग्राम दीवान खाना में पेश किए जाएंगे और क्विज में शरीक होने वाले हर सामे का नाम हम दीवान खाना में शरीक करेंगे, दुरुस्त जवाब वाले सामे का नाम शामिल करेंगे। और अब अपने मेज़बानों को इजाज़त दीजिए।